0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत हम धर्माधर्शकों की 16वीं धर्म सभा एक सिनोडल कलिसिया एकता सहभागिता और प्रेरिताई के अंतिम दस्तावेज पर अपनी एक चर्चा सुन रहे हैं। सिनोडल कलिसिया के अंतिम दस्तावेज के भाग 5, जिसका शीर्षक है अतः मैं तुम्हें भेजता हूँ, इसकी शुरुआत करते हुए हमने अपने विगत प्रसारण के अंत में कहा प्रशिक्षण के कार्य प्रणाली जिसके द्वारा सिनोडालिटी के नए उत्साह को लाभ प्राप्त होता है, हमें चाहिए कि हम धर्म शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही दीक्षांत की यात्रा में धर्म शिक्षा सदैव प्रेरिताई की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कराती है। प्रेरिताई हेतु शिष्यों के समुदाय को इस बात का ज्ञान है कि करुणा की निशानी और हर व्यक्ति के जीवन के अनुभवों के आधार पर धर्म शिक्षा का अनुपालन कैसे किया जा सकता है। कलिसिया की धर्म शिक्षा के सार को खोए बिना इसे अस्तित्वगत परिधि तक कैसे ले जाया जाता है। इस भांति यह हमारे समय के नर और नारियों के लिए एक वार्ता का प्रयोगशाला बनता और उन्हें जीवन के अर्थ को खोजने में मददगार सिद्ध होता है। श्रोताओं, विशेष प्रेरिताई कार्य और संसाधनों के अलावे ख्रिस्ती समुदाय को हम और भी अलग स्थानों में प्रशिक्षण स्थलों के रूप में पाते हैं, जैसे कि विद्यालयों में, व्यावसायिक प्रशिक्षण विद्यालयों, महाविद्यालयों में, इसके साथ ही उन स्थानों में जहां लोगों को सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के लिए तैयार किया जाता है, और इसके अलावे खेल की दुनिया, संगीत और कला के क्षेत्र में। सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद जो बहुधा अलग अलग अभ्यासों और परंपराएं तय करते हैं, कैथोलिक प्रेरणा से प्रेरित प्रशिक्षण केंद्र तेजी से खुद को एक ऐसे कलिसिया की अग्रिम पंक्ति में लाते हैं जो हमेशा प्रेरिताई की ओर आगे बढ़ती है। सिनोडालिटी के अभ्यासों से प्रेरित वे मित्रतापूर्ण और सहभागिता के संबंधों में एक उर्वरक संदर्भ बन सकते हैं। वे ऐसे माहौल बन जाते हैं जो जिंदगी के साक्षी बनते हैं। उनमें हुनर और संगठन उससे भी बढ़कर आम लोगों के हाथ में होते हैं, जिसमें परिवारों के योगदान को प्राथमिकता दी जाती है। विशेष रूप से कैथोलिक विद्यालय और महाविद्यालय विश्वास और संस्कृति के मध्य वार्ता हेतु अपने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते और मूल्यों के संदर्भ में नैतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। वे ख्रिस्त के संग संबंध स्थापित करने का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं जो हमारे जीवन की पूर्णता की एक निशानी है। इस भांति वे उन मुख्य शैलियों के विकल्प को बढ़ावा देने में सक्षम होते हैं जो अक्सर व्यक्तिवाद और प्रतिस्पर्धा से चलते हैं, और इस तरह वे एक नबुवत भूमिका भी निभाते हैं। कुछ परिस्थितियों में वे सिर्फ वे स्थल होते हैं जहां बच्चे और युवा कलिसिया के संपर्क में आते हैं, जब अलग अलग संस्कृति और अलग अलग धर्मों के बीच वार्ता से प्रेरणा मिलती है तो उनकी पढ़ाई लिखाई को दूसरे धार्मिक परंपराओं के लोग भी मानवीय विकास के तौर पर अहमियत देते हैं। श्रोताओं, बपतिस्मा प्राप्त लोगों के लिए एक साझा सिनोडल प्रशिक्षण एक क्षितिज का निर्माण करता है जिसके तहत एक विशेष प्रशिक्षण की समझ और उसका अभ्यास व्यक्तिगत रूप में प्रेरिताई और बुलाहट की मांग करती है। ऐसा करने के लिए हमें चाहिए कि हम विभिन्न बुलाहटों के माध्यम उसे उपहारों के आदान प्रदान, सेवा के दृष्टिकोण से और अलग अलग उत्तरदायित्व में सहभागी होने हेतु शिक्षा देने के तरीके स्वरूप देखें। इसकी मांग जो हमारे लिए सिनोडल प्रक्रिया में निकल कर आई बहुधा हमसे मानसिकता में परिवर्तन की मांग करती है। एक नवीनता जो प्रशिक्षण और प्रक्रियाओं दोनों के संदर्भ में नवीनता की मांग करती है। इससे भी बढ़कर हम इसमें आंतरिक रूप में एक तत्परता को पाते हैं जो अपने को विश्वास में भाई बहनों से मिलन द्वारा समृद्ध करता है, जो पूर्व ग्रहों और विखंडित विचारों पर विजय हासिल करना है। प्रशिक्षण का सार्वभौमिक आयाम हमारी मानसिकता में बदलाव लाने को मदद करता है। श्रोताओं, इन सारी प्रक्रियाओं में हम एक विस्तृत मांग को पाते हैं कि अभिषिक्त व्यक्ति के लिए प्रेरिताई की नियुक्ति आत्म परख और प्रशिक्षण की मांग करती है जो एक सिनोडल रूप में हो। इसमें नारियों की एक विशेष सहभागिता हो, समुदायों के दैनिक जीवन में एक पूर्ण सहभागिता और प्रशिक्षण को चाहिए कि वह कलिसे के हर जन के संग सहयोग के साथ साथ कलिसे में आत्म मंथन की प्रक्रिया को पोषित करे। यह हमें साहसपूर्वक प्रशिक्षकों को तैयार करने में अपनी शक्ति विनय करने को सम्माहित करता है। धर्म सभा हमसे इस बात की मांग करती है कि हम पुरोहित संस्था की मौलिक प्रणाली के संबंध में विचार करें जिससे हम धर्म सभा की मांग के अनुरूप अपने कार्यों का निर्वहन कर सकें। हमें एक निश्चित दिशा निर्देशिका को परिभाषित करने की जरूरत है जिससे हम सिनोडालिटी का सही प्रशिक्षण

ईश प्रजा के प्रशिक्षण से संबंधित कुछ विशेष क्षेत्रों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराया है। इसमें सर्वप्रथम हम डिजिटल वातावरण में सीखने की प्रक्रिया के प्रभाव को पाते हैं। ध्यान केंद्रित करना, विश्व और स्वयं के बारे में सचेतना और एक दूसरे के संग संबंधों को स्थापित करना। डिजिटल संस्कृति को हम वर्तमान सांस्कृतिक परिवेश में और उभरते हुए प्रेरिताई के क्षेत्र में कलिस्य की गवाही का एक अहम हिस्सा स्वरूप पाते हैं। इसके लिए यह पक्का करना जरूरी है कि ख्रिस्तीय संदेश ऑनलाइन भरोसेमंद तरीके से मौजूद हों, उसकी विषय वस्तु को आदर्श के हिसाब से विकृत ना किया जाए। हालांकि डिजिटल मीडिया में हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने की बहुत बड़ी क्षमता है, लेकिन यह किसी पर धौंस जमाने, गलत जानकारी, यौन शोषण और लत के जरिए नुकसान और चोट भी पहुंचा सकता है। कलिस्य के शिक्षण संस्थान को चाहिए कि वे बच्चों और बड़ों को वेबसाइट के सुरक्षित उपयोग के संबंध में विचारपूर्ण और सुरक्षित बातों की जानकारी प्रदान करें। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत धर्माधर्शकों की 16वीं धर्म सभा एक सिनोडल कलिस्य एकता सहभागिता और प्रेरिताई की अंतिम दस्तावेज पर अपनी एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौदह ने वैटिकन में सेवारत कर्मचारियों के बच्चों के लिए आयोजित ग्रीष्म शिविर के प्रतिभागियों से मुलाकात करते हुए उन्हें तकनीकी उपकरणों का जिम्मेदारी पूर्वक प्रयोग करने की सलाह दी। पोप लियो ने सोमवार को वैटिकन के स्तातेरागात से अर्थात ग्रीष्म के बच्चे समर कैंप का दौरा किया। उन्होंने कहा, तकनीकी बहुत अच्छी और कई चीज़ों के लिए बहुत काम की हो सकती है, हालांकि जब हम साथ होते हैं तो हमारे हाथ में हमेशा मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन या टैबलेट होना ज़रूरी नहीं है। पोप ने बच्चों को तकनीकी उपकरणों के साथ नहीं बल्कि लोगों के साथ समय बिताने का प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कहा, दोस्ती बनाना, एक साथ समय बिताना, एक साथ खेलना और शायद एक साथ पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है। हम मानव हैं, एक व्यक्ति हैं और हमें दूसरों से मिलना जुलना बहुत जरूरी है। आगे पारिवारिक जीवन पर ध्यान देते हुए पोप ने कहा, जब परिवार एक साथ होता है तो फोन पर व्यस्त रहते हुए एक साथ बैठना काफ़ी नहीं होता। बात करना, वार्तालाप करना और एक दूसरे के साथ आनंद लेने सीखना बहुत जरूरी है। पोप ने प्रार्थना के

तौर पर भी जोर दिया और बच्चों को याद दिलाया कि भले ही हमारे फोन पर बाइबल और प्रार्थनाएं हों, ईश्वर हमारे फोन देखना नहीं चाहते, ईश्वर हमारे दिल एवं हमारा जीवन देखना चाहते हैं। खासकर बड़े बच्चों से बात करते हुए पोप ने चेतावनी दी कि कई एप्लीकेशंस जानबूझकर यूजर्स को लंबे समय तक एंगेज रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उन्होंने कहा, वे हमें इस तकनीकी पर निर्भर बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने स्क्रीन के इस्तेमाल पर व्यवहारिक सीमा तय करने का सुझाव दिया, जैसे दिन के कुछ खास समय में फोन को दूर रखना और बातचीत एवं पारिवारिक गतिविधि के लिए जगह बनाना। पोप ने बच्चों को रिश्ते बनाकर, प्रार्थना में ईश्वर की खोज कर और ऐसी निर्भरता से बचकर जो उनकी स्वतंत्रता को कम कर सकती है, अपनी मानवीय एवं आध्यात्मिक जीवन को विकसित करने का प्रोत्साहन दिया। एक दूसरे युवा प्रतिभागी ने पोप से उनकी यात्राओं के अनुभव पूछे। अपनी यात्राओं के बारे बताते हुए पोप ने कई ऐसे मौकों को याद किया जब GPS नेविगेशन सिस्टम ने उन्हें गलत दिशा दिखाई। उन्होंने कहा, इटली में, दूसरे यूरोपीय देशों में, पेरू में और एक बार तो अमेरिका में भी मैंने GPS को फॉलो किया और यह मुझे गलत रास्ते पर ले गया। पोप ने समझाया कि अपने लिए सोचने, सीखना और यह जानने की महत्वपूर्ण क्षमता विकसित करना कि हम जीवन में कहाँ जा रहे हैं काफ़ी बेहतर है। उन्होंने बच्चों को सलाह दी कि वे पूरी तरह तकनीकी पर निर्भर रहने के बजाय ईश्वर की दी हुई क्षमता का पूरा इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा, अगर मेरा दिमाग काम कर रहा है तो मुझे अपने फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, और कहा कि तैयारी और अच्छा फैसला लोगों को मुश्किलों से निपटने और अचानक आने वाली समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है। मुलाकात के अंत में पोप ने बच्चों को अपने साथ प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें अपने माता पिता को यह बताने का प्रोत्साहन दिया कि उन्होंने पोप के साथ मिलकर प्रार्थना की। पोप लियो 14, 26 और 27 जून को कार्डिनल मंडल के साथ एक असाधारण सभा कंसिस्ट्री में भाग लेंगे जो कलीसिया और दुनिया की वर्तमान स्थिति पर केंद्रित होगी, जहां शांति की खोज और सिनोडालिटी को लागू करने पर ध्यान दिया जाएगा। वैटिकन प्रेस कार्यालय ने कलीसिया के संरक्षक संत पेत्रुस एवं संत पॉलुस के महापर्व के ठीक पहले 26 और 27 जून के लिए निर्धारित कार्डिनलों की असाधारण सभा के लिए कार्यक्रम जारी किया। पोप लियो 14 जब कार्डिनलों से मिलेंगे तो वे दुनिया को प्रभावित करने वाले संघर्षों जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि कलीसिया को शांति एवं मेल मिलाप लाने की भाषा एवं दृष्टिकोण के माध्यम से कैसे संवाद करना चाहिए। जनवरी में हुई बैठक जिसमें दुनिया भर से 170 कार्डिनल निर्वाचक और गैर निर्वाचक कार्डिनल एक साथ आए थे, उसके बाद यह पोप लियो 14 की दूसरी कंसिस्ट्री सभा होगी। उस कंसिस्ट्री के अंत में पोप ने जून की सभा की घोषणा की थी और कार्डिनलों से कहा था कि मुझे आप पर भरोसा रखने की जरूरत महसूस होती है। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार यह कार्य सिनोडल तरीके से होगा, जिसमें प्रार्थना, मौन, व्यक्तिगत चिंतन, दलों में बातचीत और एक साथ सभा के सत्र शामिल होंगे। कार्डिनलों से कहा गया है कि वे हॉल में होने वाली बातों को गोपनीय रखें और कंसिस्ट्री के दौरान प्रेस को कोई बयान ना दें, ताकि भाईचारे का माहौल बना रहे। भाग लेने वालों को 20 दलों में विभक्त किया जाएगा। 9 दलों में चुनाव में भाग लेने वाले कार्डिनल शामिल होंगे जो ऑर्डिनरी हैं। उनमें प्रेरितिक राजदूत और ऐसे कार्डिनल भाग लेंगे जिन्होंने ऑर्डिनरी के रूप में अपनी सेवा पूरी की है। बाकी 11 दलों में रोमी परमाध्यक्ष कार्यालय के चुनाव में भाग लेने वाले कार्डिनल और चुनाव में भाग नहीं लेने वाले कार्डिनल शामिल होंगे। हर दल में एक अध्यक्ष होगा जो चर्चा को संचालित करेगा और समय का ध्यान रखेगा। 18 नवंबर 1920 को USSR दुनिया का पहला देश बना जिसने आगरा पर गर्भपात को वैध कर दिया। जॉनस्टन के पुराने के अनुसार सोवियत राज के 70 सालों में 260 मिलियन से ज्यादा गर्भपात किए गए। इस प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर वैध एवं आसान बनाने से समाज में एक तथाकथित गर्भपात संस्कृति को बढ़ावा मिला। मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ इरीना माल्टसेवा बताती हैं, सोवियत काल में गर्भपात को एक रूटीन प्रक्रिया माना जाता था। इसका पूरे परिवार पर बुरा असर पड़ा, जिससे मनोवैज्ञानिक दिक्कतें, भावनात्मक अलगाव और यहाँ तक कि हिंसा भी होती है।
इसलिए उनका मानना है कि आज सोवियत के बाद भी दुनिया में लगभग हर इंसान पर सीधे या किसी और तरह से गर्भपात के बाद होने वाले आघात के नतीजों का असर पड़ता है। 1990 के दशक के अंत में रूस में गर्भपात के नतीजों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा होने लगी, हालांकि यह बातचीत ज्यादातर धार्मिक और मनोवैज्ञानिक दायरे तक ही सीमित थी। लगभग 2 दशक बाद पहला कानूनी कदम सामने आया। उदाहरण के लिए 2011 में एक मौन का सप्ताह शुरू किया गया, जो गर्भपात से पहले एक आवश्यक इंतजार का समय होता था, जिसका मकसद महिलाओं को अपने फैसले पर दोबारा सोचने का मौका देना। पोप लियो 14वें के विश्व खाद्य कार्यक्रम के मुख्यालय के दौरे पर दक्षिणी सूडान में काम कर चुकी WFP की अधिकारी जेमा स्नोडन का कहना है कि यह दौरा UN के मानवीय काम करने वालों के मिशन के लिए प्रोत्साहन देता है, खासकर उन लोगों के लिए जो लड़ाई और जलवायु संकट से प्रभावित दूर दराज के इलाकों में सेवा कर रहे हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत हम धर्माधर्शकों की 16वीं धर्म सभा एक सिनोडल कलिसिया एकता सहभागिता और प्रेरिताई के अंतिम दस्तावेज पर अपनी एक चर्चा सुन रहे हैं। सिनोडल कलिसिया के अंतिम दस्तावेज के भाग 5, जिसका शीर्षक है अतः मैं तुम्हें भेजता हूँ, इसकी शुरुआत करते हुए हमने अपने विगत प्रसारण के अंत में कहा, प्रशिक्षण के कार्य प्रणाली जिसके द्वारा सिनोडालिटी के नए उत्साह को लाभ प्राप्त होता है, हमें चाहिए कि हम धर्म शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही दीक्षांत की यात्रा में धर्म शिक्षा सदैव प्रेरिताई की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कराती है। प्रेरिताई हेतु शिष्यों के समुदाय को इस बात का ज्ञान है कि करुणा की निशानी और हर व्यक्ति के जीवन के अनुभवों के आधार पर धर्म शिक्षा का अनुपालन कैसे किया जा सकता है। कलिसिया की धर्म शिक्षा के सार को खोए बिना इसे अस्तित्वगत परिधि तक कैसे ले जाया जाता है। इस भांति यह हमारे समय के नर और नारियों के लिए एक वार्ता का प्रयोगशाला बनता और उन्हें जीवन के अर्थ को खोजने में मददगार सिद्ध होता है। श्रोताओं, विशेष प्रेरिताई कार्य और संसाधनों के अलावे ख्रिस्ती समुदाय को हम और भी अलग स्थानों में प्रशिक्षण स्थलों के रूप में पाते हैं, जैसे कि विद्यालयों में, व्यावसायिक प्रशिक्षण विद्यालयों, महाविद्यालयों में, इसके साथ ही उन स्थानों में जहां लोगों को सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के लिए तैयार किया जाता है, और इसके अलावे खेल की दुनिया, संगीत और कला के क्षेत्र में। सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद जो बहुधा अलग अलग अभ्यासों और परंपराएं तय करते हैं, कैथोलिक प्रेरणा से प्रेरित प्रशिक्षण केंद्र तेजी से खुद को एक ऐसे कलिसिया की अग्रिम पंक्ति में लाते हैं जो हमेशा प्रेरिताई की ओर आगे बढ़ती है। सिनोडालिटी के अभ्यासों से प्रेरित वे मित्रतापूर्ण और सहभागिता के संबंधों में एक उर्वरक संदर्भ बन सकते हैं। वे ऐसे माहौल बन जाते हैं जो जिंदगी के साक्षी बनते हैं। उनमें हुनर और संगठन उससे भी बढ़कर आम लोगों के हाथ में होते हैं, जिसमें परिवारों के योगदान को प्राथमिकता दी जाती है। विशेष रूप से कैथोलिक विद्यालय और महाविद्यालय विश्वास और संस्कृति के मध्य वार्ता हेतु अपने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते और मूल्यों के संदर्भ में नैतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। वे ख्रिस्त के संग संबंध स्थापित करने का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं जो हमारे जीवन की पूर्णता की एक निशानी है। इस भांति वे उन मुख्य शैलियों के विकल्प को बढ़ावा देने में सक्षम होते हैं जो अक्सर व्यक्तिवाद और प्रतिस्पर्धा से चलते हैं, और इस तरह वे एक नबुवत भूमिका भी निभाते हैं। कुछ परिस्थितियों में वे सिर्फ वे स्थल होते हैं जहां बच्चे और युवा कलिसिया के संपर्क में आते हैं, जब अलग अलग संस्कृति और अलग अलग धर्मों के बीच वार्ता से प्रेरणा मिलती है तो उनकी पढ़ाई लिखाई को दूसरे धार्मिक परंपराओं के लोग भी मानवीय विकास के तौर पर अहमियत देते हैं। श्रोताओं, बपतिस्मा प्राप्त लोगों के लिए एक साझा सिनोडल प्रशिक्षण एक क्षितिज का निर्माण करता है जिसके तहत एक विशेष प्रशिक्षण की समझ और उसका अभ्यास व्यक्तिगत रूप में प्रेरिताई और बुलाहट की मांग करती है। ऐसा करने के लिए हमें चाहिए कि हम विभिन्न बुलाहटों के माध्यम उसे उपहारों के आदान प्रदान, सेवा के दृष्टिकोण से और अलग अलग उत्तरदायित्व में सहभागी होने हेतु शिक्षा देने के तरीके स्वरूप देखें। इसकी मांग जो हमारे लिए सिनोडल प्रक्रिया में निकल कर आई बहुधा हमसे मानसिकता में परिवर्तन की मांग करती है। एक नवीनता जो प्रशिक्षण और प्रक्रियाओं दोनों के संदर्भ में नवीनता की मांग करती है। इससे भी बढ़कर हम इसमें आंतरिक रूप में एक तत्परता को पाते हैं जो अपने को विश्वास में भाई बहनों से मिलन द्वारा समृद्ध करता है, जो पूर्व ग्रहों और विखंडित विचारों पर विजय हासिल करना है। प्रशिक्षण का सार्वभौमिक आयाम हमारी मानसिकता में बदलाव लाने को मदद करता है। श्रोताओं, इन सारी प्रक्रियाओं में हम एक विस्तृत मांग को पाते हैं कि अभिषिक्त व्यक्ति के लिए प्रेरिताई की नियुक्ति आत्म परख और प्रशिक्षण की मांग करती है जो एक सिनोडल रूप में हो। इसमें नारियों की एक विशेष सहभागिता हो, समुदायों के दैनिक जीवन में एक पूर्ण सहभागिता और प्रशिक्षण को चाहिए कि वह कलिसिया के हर जन के संग सहयोग के साथ साथ कलिसिया में आत्म मंथन की प्रक्रिया को पोषित करे। यह हमें साहसपूर्वक प्रशिक्षकों को तैयार करने में अपनी शक्ति विनय करने को सम्माहित करता है। धर्म सभा हमसे इस बात की मांग करती है कि हम पुरोहित संस्था की मौलिक प्रणाली के संबंध में विचार करें जिससे हम धर्म सभा की मांग के अनुरूप अपने कार्यों का निर्वहन कर सकें। हमें एक निश्चित दिशा निर्देशिका को परिभाषित करने की जरूरत है जिससे हम सिनोडालिटी का सही प्रशिक्षण दे सकें। प्रशिक्षण की प्रक्रिया उम्मीदवारों में प्रेरिताई हेतु एक जुनून उत्पन्न करें। धर्माध्यक्षकों का प्रशिक्षण भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जिससे वे अपनी प्रेरिताई का निष्पादन भली भांति करें, पवित्र आत्मा में एकता के उपहारों को स्थापित करें और अपने अधिकारों का उपयोग एक सिनोडल रूप में कर सकें। सिनोडल रूप में प्रशिक्षण अपने में इस बात को सम्माहित करती है कि एकता का आयाम अभिषिक्त प्रेरिताई के सभी रूपों में उपस्थित हो। श्रोताओं, धर्म सभा की प्रक्रिया ने सिनोडालिटी के संबंध में ईश प्रजा के प्रशिक्षण से संबंधित कुछ विशेष क्षेत्रों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराया है। इसमें सर्वप्रथम हम डिजिटल वातावरण में सीखने की प्रक्रिया के प्रभाव को पाते हैं। ध्यान केंद्रित करना, विश्व और स्वयं के बारे में सचेतना और एक दूसरे के संग संबंधों को स्थापित करना। डिजिटल संस्कृति को हम वर्तमान सांस्कृतिक परिवेश में और उभरते हुए प्रेरिताई के क्षेत्र में कलिसिया की गवाही का एक अहम हिस्सा स्वरूप पाते हैं। इसके लिए यह पक्का करना जरूरी है कि ख्रिस्तीय संदेश ऑनलाइन भरोसेमंद तरीके से मौजूद हों, उसकी विषय वस्तु को आदर्श के हिसाब से विकृत ना किया जाए। हालांकि डिजिटल मीडिया में हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने की बहुत बड़ी क्षमता है, लेकिन यह किसी पर धौंस जमाने, गलत जानकारी, यौन शोषण और लत के जरिए नुकसान और चोट भी पहुंचा सकता है। कलिसिया के शिक्षण संस्थान को चाहिए कि वे बच्चों और बड़ों को वेबसाइट के सुरक्षित उपयोग के संबंध में विचारपूर्ण और सुरक्षित बातों की जानकारी प्रदान करें। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत धर्माध्यक्षकों की 16वीं धर्म सभा एक सिनोडल कलिसिया एकता सहभागिता और प्रेरिताई की अंतिम दस्तावेज पर अपनी एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौथे ने वैटिकन में सेवारत कर्मचारियों के बच्चों के लिए आयोजित ग्रीष्म शिविर के प्रतिभागियों से मुलाकात करते हुए उन्हें तकनीकी उपकरणों का जिम्मेदारी पूर्वक प्रयोग करने की सलाह दी। पोप लियो ने सोमवार को वैटिकन के स्तातेरागात से अर्थात ग्रीष्म के बच्चे समर कैंप का दौरा किया। उन्होंने कहा, तकनीकी बहुत अच्छी और कई चीज़ों के लिए बहुत काम की हो सकती है, हालांकि जब हम साथ होते हैं तो हमारे हाथ में हमेशा मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन या टैबलेट होना ज़रूरी नहीं है। पोप ने बच्चों को तकनीकी उपकरणों के साथ नहीं बल्कि लोगों के साथ समय बिताने का प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कहा, दोस्ती बनाना, एक साथ समय बिताना, एक साथ खेलना और शायद एक साथ पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है। हम मानव हैं, एक व्यक्ति हैं और हमें दूसरों से मिलना जुलना बहुत जरूरी है। आगे पारिवारिक जीवन पर ध्यान देते हुए पोप ने कहा, जब परिवार एक साथ होता है तो फोन पर व्यस्त रहते हुए एक साथ बैठना काफ़ी नहीं होता। बात करना, वार्तालाप करना और एक दूसरे के साथ आनंद लेने सीखना बहुत जरूरी है। पोप ने प्रार्थना के महत्व पर भी जोर दिया और बच्चों को याद दिलाया कि भले ही हमारे फोन पर बाइबल और प्रार्थनाएं हों, ईश्वर हमारे फोन देखना नहीं चाहते। ईश्वर हमारे दिल एवं हमारा जीवन देखना चाहते हैं। खासकर बड़े बच्चों से बात करते हुए पोप ने चेतावनी दी कि कई एप्लीकेशंस जानबूझकर यूजर्स को लंबे समय तक एंगेज रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। उन्होंने कहा, वे हमें इस तकनीकी पर निर्भर बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने स्क्रीन के इस्तेमाल पर व्यवहारिक सीमा तय करने का सुझाव दिया, जैसे दिन के कुछ खास समय में फ़ोन को दूर रखना और बातचीत एवं पारिवारिक गतिविधि के लिए जगह बनाना। पोप ने बच्चों को रिश्ते बनाकर, प्रार्थना में ईश्वर की खोज कर और ऐसी निर्भरता से बचकर जो उनकी स्वतंत्रता को कम कर सकती है, अपनी मानवीय एवं आध्यात्मिक जीवन को विकसित करने का प्रोत्साहन दिया। एक दूसरे युवा प्रतिभागी ने पोप से उनकी यात्राओं के अनुभव पूछे। अपनी यात्राओं के बारे बताते हुए पोप ने कई ऐसे मौकों को याद किया जब GPS नेविगेशन सिस्टम ने उन्हें गलत दिशा दिखाई। उन्होंने कहा, इटली में, दूसरे यूरोपीय देशों में, पेरू में और एक बार तो अमेरिका में भी मैंने GPS को फॉलो किया और यह मुझे गलत रास्ते पर ले गया। पोप ने समझाया कि अपने लिए सोचने, सीखना और यह जानने की महत्वपूर्ण क्षमता विकसित करना कि हम जीवन में कहाँ जा रहे हैं काफ़ी बेहतर है। उन्होंने बच्चों को सलाह दी कि वे पूरी तरह तकनीकी पर निर्भर रहने के बजाय ईश्वर की दी हुई क्षमता का पूरा इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा, अगर मेरा दिमाग काम कर रहा है तो मुझे अपने फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, और कहा कि तैयारी और अच्छा फैसला लोगों को मुश्किलों से निपटने और अचानक आने वाली समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है। मुलाकात के अंत में पोप ने बच्चों को अपने साथ प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें अपने माता पिता को यह बताने का प्रोत्साहन दिया कि उन्होंने पोप के साथ मिलकर प्रार्थना की। पोप लियो चौथवें 26 और 27 जून को कार्डिनल मंडल के साथ एक असाधारण सभा कंसिस्ट्री में भाग लेंगे, जो कलीसिया और दुनिया की वर्तमान स्थिति पर केंद्रित होगी, जहां शांति की खोज और सिनोडालिटी को लागू करने पर ध्यान दिया जाएगा। वैटिकन प्रेस कार्यालय ने कलीसिया के संरक्षक संत पेत्रुस एवं संत पॉलुस के महापर्व के ठीक पहले 26 और 27 जून के लिए निर्धारित कार्डिनलों की असाधारण सभा के लिए कार्यक्रम जारी किया। पोप लियो चौथवें जब कार्डिनलों से मिलेंगे तो वे दुनिया को प्रभावित करने वाले संघर्षों जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि कलीसिया को शांति एवं मेल मिलाप लाने की भाषा एवं दृष्टिकोण के माध्यम से कैसे संवाद करना चाहिए। जनवरी में हुई बैठक जिसमें दुनिया भर से 170 कार्डिनल निर्वाचक और गैर निर्वाचक कार्डिनल एक साथ आए थे, उसके बाद यह पोप लियो चौदहवें की दूसरी कंसिस्ट्री सभा होगी। उस कंसिस्ट्री के अंत में पोप ने जून की सभा की घोषणा की थी।
और कार्डिनलों से कहा था कि मुझे आप पर भरोसा रखने की जरूरत महसूस होती है। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार यह कार्य सिनोडल तरीके से होगा, जिसमें प्रार्थना, मौन, व्यक्तिगत चिंतन, दलों में बातचीत और एक साथ सभा के सत्र शामिल होंगे। कार्डिनलों से कहा गया है कि वे हॉल में होने वाली बातों को गोपनीय रखें और कंसिस्ट्री के दौरान प्रेस को कोई बयान न दें, ताकि भाईचारे का माहौल बना रहे। भाग लेने वालों को 20 दलों में विभक्त किया जाएगा। 9 दलों में चुनाव में भाग लेने वाले कार्डिनल शामिल होंगे जो ऑर्डिनरी हैं। उनमें प्रेरितिक राजदूत और ऐसे कार्डिनल भाग लेंगे जिन्होंने ऑर्डिनरी के रूप में अपनी सेवा पूरी की है। बाकी 11 दलों में रोमी परमाध्यक्ष कार्यालय के चुनाव में भाग लेने वाले कार्डिनल और चुनाव में भाग नहीं लेने वाले कार्डिनल शामिल होंगे। हर दल में एक अध्यक्ष होगा जो चर्चा को संचालित करेगा और समय का ध्यान रखेगा। 18 नवंबर 1920 को यूएसएसआर दुनिया का पहला देश बना जिसने आगरा पर गर्भपात को वैध कर दिया। जॉनस्टन के पुरालेख के अनुसार सोवियत राज के 70 सालों में 260 मिलियन से ज्यादा गर्भपात किए गए। इस प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर वैध एवं आसान बनाने से समाज में एक तथाकथित गर्भपात संस्कृति को बढ़ावा मिला। मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ इरीना माल्ट सेवा बताती हैं, सोवियत काल में गर्भपात को एक रूटीन प्रक्रिया माना जाता था। इसका पूरे परिवार पर बुरा असर पड़ा, जिससे मनोवैज्ञानिक दिक्कतें, भावनात्मक अलगाव और यहाँ तक कि हिंसा भी होती है। इसलिए उनका मानना है कि आज सोवियत के बाद भी दुनिया में लगभग हर इंसान पर सीधे या किसी और तरह से गर्भपात के बाद होने वाले आघात के नतीजों का असर पड़ता है। 1990 के दशक के अंत में रूस में गर्भपात के नतीजों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा होने लगी, हालांकि यह बातचीत ज्यादातर धार्मिक और मनोवैज्ञानिक दायरे तक ही सीमित थी। लगभग 2 दशक बाद पहला कानूनी कदम सामने आया। उदाहरण के लिए 2011 में एक मौन का सप्ताह शुरू किया गया, जो गर्भपात से पहले एक आवश्यक इंतजार का समय होता था, जिसका मकसद महिलाओं को अपने फैसले पर दोबारा सोचने का मौका देना। पोप लियो 14वें के विश्व खाद्य कार्यक्रम के मुख्यालय के दौरे पर दक्षिणी सूडान में काम कर चुके WFP की अधिकारी जेमा स्नोडन का कहना है कि यह दौरा UN के मानवीय काम करने वालों के मिशन के लिए प्रोत्साहन देता है, खासकर उन लोगों के लिए जो लड़ाई और जलवायु संकट से प्रभावित दूर दराज के इलाकों में सेवा कर रहे हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विंटे।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र

0: धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: में।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: महिमा का पहला भेद, प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठते हैं,
2: मतलब हम विश्वास में दृढ़ रहें।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का दूसरा भेद, प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित होते हैं,
2: मतलब हम ईश्वर को दिन दिन अधिक प्यार करें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का तीसरा भेद पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है,
2: मतलब हम अपने पड़ोसियों को प्यार कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: महिमा का चौथा भेद, माता मरियम स्वर्ग में उठा रखी जाती है।
2: मतलब हम अपने कर्तव्य काम ठीक से कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का पांचवा भेद, माता मरियम स्वर्ग में रानी का मुकुट पाती है।
2: मतलब हमारे बिछुड़े भाई बहने असल धर्म में फिर लौट सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर।

साधना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो चौदहवें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II. Oggi in particolare sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, sulla liturgia.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। हम वैटिकन द्वितीय महाधर्म सभा के धर्म सिद्धांत, विशेषकर साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम, धर्म विधि पर अपनी धर्म शिक्षा माला को जारी रखते हैं। उन्होंने कहा कि जब संत अगुस्टीन ख्रिस्त के रहस्यमय शरीर के बारे में नए दीक्षार्थियों को बताने की चाह रखते हैं, तो वे संत पौलुस के इन पदों का उपयोग करते हैं जिसे हमने अभी अभी सुना है। इस तरह आप सब मिलकर मसीह के शरीर हैं और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग। वे इस बात को जोड़ते हैं, यह स्वयं आपका रहस्य है जिसे आप प्राप्त करते हैं। आप जो हैं उसका प्रत्युत्तर यह कहते हुए देते हैं आमीन, और आपका यह उत्तर आपकी पहचान बनती है।
2: Vi si dice il corpo di Cristo e voi rispondete amen.
1: आपसे कहा जाता है ख्रिस्त का शरीर, और जवाब में आप कहते हैं आमीन। अतः आप ख्रिस्त के शरीर का अंग बने जिससे आपके आमीन की सत्यता साबित हो। आप जो देखते हैं और आप जो हैं उसे स्वीकार करें। संत पापा लियो ने यीशु की अंतिम व्यारी के भोज की याद दिलाते हुए कहा, धर्म विधि के धर्म सिद्धांत हमें संत अगुस्टिन के शब्दों में यूखारिस्त के बारे में कहते हैं। ख्रिस्तियों के लिए ख्रिस्त के भोज में शामिल होने का अर्थ ईश्वर के वचनों से शिक्षा ग्रहण करना है, उसके द्वारा पोषित होना और ईश्वर को धन्यवाद देना। हम उन्हें उनके शब्दों में और यूखारिस्त में ग्रहण करने के द्वारा वही बनते हैं जिसे हम ग्रहण करते हैं। हम वह शरीर बनते हैं जिसका शीर्ष पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त हैं, जो पिता के दाहिने विराजमान हैं, जो हमारे लिए स्वर्ग में एक स्थान तैयार करते हैं। इस भांति यूखारिस्त ईश्वर के राज्य का वह संस्कार है जो आने वाला है। यह वह रोटी है जो स्वर्ग हमारे निवास की ओर यात्रा करने हेतु हमें अग्रसर करती है, उस पुण्य समय तक जब ईश्वर सब कुछ पर शासन करेंगे। संत पापा ने कहा कि विश्वासियों का समुदाय धर्म विधि के दौरान न सिर्फ पुरोहित के हाथों से बल्कि उनके संग बलि अर्पित करते हैं। इस दृष्टिकोण से यूखारिस्त ख्रिस्तियों के लिए आध्यात्मिक बलि का स्वरूप है, ईश्वर और एक दूसरे के संग एकता का मार्ग। इसमें सहभागी होते हुए वे इस बात को सीखते हैं, अपने को समर्पित करने ख्रिस्त की मध्यस्थता द्वारा वे अपने को प्रतिदिन ईश्वर और एक दूसरे के संग एक गहरे संबंध में प्रवेश करता हुआ पाते हैं। इस भांति ख्रिस्त के संग अपने को एक शरीर बनाते हुए यूखारिस्त हमें यीशु ख्रिस्त की जीवन शैली को अपनाने की शिक्षा देती है, जहां हम उन्हें अपने को स्वतंत्र उपहार स्वरूप देते हैं। यह उपहार हमें एकता के आयाम से संयुक्त करता है, जो हमें दुनिया, हमारे समुदायों, हमारे परिवारों और हमारे हृदयों को बांटने वाली ताकतों के मध्य हमें एक शक्तिशाली मारक बनाती है। संत पापा लियो ने कहा,
2: Carissimi, quando partecipiamo all'Eucaristia, siamo invitati ad ascoltare la parola di Dio e a nutrirci alla mensa del Signore.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, जब हम यूखारिस्त में सहभागी होते हैं, तो हम ईश्वर के वचनों को सुनने और अपने को उनकी मेज से पोषित करने हेतु बुलाए जाते हैं, जहां वे अपने को पिता के लिए अर्पित करते हैं। मिस्सा के ये दो भाग, शब्द समारोह और यूखारिस्त की धर्मविधि, ये दोनों अपने में इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि वे अपने में पूजन विधि एक ही कार्य लगते हैं। संत पापा ने कहा कि इस वचन के संबंध में हमारे लिए इस बात को याद करने की आवश्यकता है कि यह अपने में सिर्फ बौद्धिक रूप में धर्म ग्रंथ का ज्ञान हासिल करना नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के सजीव और सक्रिय वचनों को ग्रहण करना है, जिसे ईश्वर हम में से हर एक को और हर समय व्यक्तिगत रूप में कहते हैं। ईश्वर का वचन हमें यूखारिस्त की रोटी के संग पोषित और मजबूत बनाए रखता और हमें पापों की सड़न से दूर करते हुए ख्रिस्त में नया जीवन प्रदान करता है। यूखारिस्त हमें धर्म ग्रंथ की समझ हेतु खोलता है, वैसे ही जैसे कि धर्म ग्रंथ अपने में यूखारिस्त के रहस्य की चर्चा हमारे लिए करता और उसे हमारे लिए प्रज्वलित करता है। वैटिकन द्वितीय महासभा हमें इस बात के लिए निमंत्रण देती है कि हम बाइबल की निधियों को और अधिक रूप में खुला रखें, जिससे विश्वासियों को ईश्वर के वचन रूपी मेज से बेहतर भोजन मिल सके। धर्मविधि में लाई गई नवीनता ने इस समृद्धि को धर्मविधि के पाठ संग्रह में संयुक्त किया है। वह पुस्तिका जिसमें धर्म ग्रंथ के पाठों को धार्मिक अनुष्ठान के लिए संग्रहित किया गया है। इस समृद्धि को हम शुद्ध जीवित परंपरा से लिया गया पाते हैं, जो परंपरा के प्रति निष्ठा को वैध प्रगति हेतु खुलेपन के साथ जोड़ता है। संत पापा लियो ने कहा,
2: L'inizio del capitolo secondo della Costituzione sulla liturgia è intessuto di riferimenti al grande fiume della tradizione.
1: धर्मविधि हेतु धर्म सिद्धांत के अध्याय दो में हम परंपराओं की एक वृहद समृद्धि को पाते हैं, जो कलिस्स के आचार्यों से हमारे लिए प्रवाहित होती है। उन्होंने उद्धृत करते हुए कहा, अंतिम व्यारी के समय उस रात को जब उन्हें धोखा दिया गया था, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने शरीर और रक्त का बलिदान अर्पित करते हुए यूखारिस्त की स्थापना की। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि क्रूस के बलिदान को सदियों तक बनाए रखा जा सके, जब तक कि वे दोबारा न आए, और इस तरह अपनी प्यारी वधु कलिस्य को अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की यादगारी सौंपी। प्रेम का एक संस्कार, एकता की निशानी, करुणा का संबंध, पास्का का एक भोज जिसमें हम ख्रिस्त को ग्रहण करते हैं, जहां हमारा मन कृपा से भर जाता है और हमें भविष्य में महिमा की प्रतिज्ञा की जाती है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा, आइए हम विश्वास में दिव्य जीवन और उस रहस्य से अपने को परिवर्तित होने दें जिसकी यादगारी हम मनाते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने बुधवार 24 जून को फादर आनंद डेविड खलखो को रांची महाधर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है। वे अभी रांची महाधर्म प्रांत के विकर जनरल और रांची में संत मरिया महागिरजा घर के पल्ली पुरोहित के रूप में कार्यरत हैं। नवनियुक्त सहायक धर्माध्यक्ष आनंद डेविड खलखो का जन्म 20 नवंबर 1975 को रांची महाधर्म प्रांत के मांडर में हुआ। उन्होंने कोलकाता के संत जॉन वियानी माइनर सेमिनरी, संत अल्बर्ट कॉलेज मेजर सेमिनरी और रांची में संत जेबियस कॉलेज में पढ़ने के बाद रांची के संत अल्बर्ट कॉलेज में ईश शास्त्र की पढ़ाई की। 15 मई 2006 को रांची महाधर्म प्रांत के लिए उनका पुरोहिताभिषेक किया गया। पुरोहित के रूप में वे 2006 से 2009 तक कार्डिनल टोप्पो के पर्सनल सेक्रेटरी रहे। 2009 से 2011 तक मैंगलोर के मुल्लर हॉस्पिटल में हॉस्पिटल प्रशासन के प्रबंधन में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। फिर 2011 से 2015 तक CBCI सोसाइटी फॉर मेडिकल एजुकेशन उत्तर भारत के सहनिदेशक और तत्कालीन बिझान रीजन के धर्माध्यक्ष पुरोहितों के परिषद के अध्यक्ष थे। 2011 से 2020 तक लीवंस हॉस्पिटल प्रोजेक्ट मांडर के निदेशकों की समिति के सदस्य, 2015 से 2017 तक CBCI दिल्ली के महासचिव के सचिव, 2017 से 2020 जनसंपर्क अधिकारी, 2019 से 2020 तक रांची में महाधर्माध्यक्ष निवास के प्रबंधक और 2020 से रांची में संत मरिया महागिरजा घर के पल्ली पुरोहित, 2021 से रांची में सामाजिक विकास केंद्र के निदेशक और 2022 से रांची में सेमिनारियों के निदेशक तथा 2024 से रांची के विकर जनरल के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। और हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी कल्पना, आपकी कहानी कहने की सृजनशीलता और आपकी जिंदा दिली सोच की जरूरत है। हमें आज़ादी और सच्चाई की जगहें बनाने के लिए इनकी ज़रूरत है, जहां ईश्वर की कृपा सुकून और शांति का वादा दे सके। यह हौसला संत पापा लियो 14वें ने बुधवार को दुनिया के कई हिस्सों से आए लेखकों को दिया, जो 1926 में बने वाटिकन प्रकाशन भवन लिब्रेरिया एडिट्रिच वाटिकाना की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर रोम में एकत्रित हुए हैं। संत पापा ने कहा, सबसे पहले लिखना सच और खुलासे का काम है, क्योंकि यह बताता है कि हम कौन हैं, हम क्या मानते हैं और क्या उम्मीद करते हैं, हम किस दुनिया के लिए कोशिश करते हैं और हम किस भविष्य का सपना देखते हैं। संत पापा ने कहा, सच की इस खोज में हम महसूस करते हैं कि सच बहुत छोटा है, जो ईश्वर के साथ हमारी अंदरूनी बातचीत में और हमारे पड़ोसियों के साथ हमारी खुली और शिष्ट बातचीत में खुद को हमारे सामने लाता है। संत पापा ने उन्हें चेतावनी दी कि हम कभी भी सच के मालिक नहीं होते, अगर कुछ है तो वह सच ही है जो हमें जीतता है। संत पापा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लेखक दूसरों को सच की ओर खींचने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वे खुद भी इसकी ओर खींचे चले आते हैं। संत पापा ने कहा कि लिखना इंसानियत का काम है, यह देखते हुए कि साहित्य इंसानी अनुभव के परे पहुंच को शामिल करता है, एक ऐसा नजरिया हासिल करता है जो हमारी इंसानियत को बढ़ाता है। हम एक कल्पनाशील हमदर्दी विकसित करते हैं, जो हमें यह पहचानने में मदद करती है कि दूसरे असलियत को कैसे देखते हैं, अनुभव करते हैं और उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। संत पापा ने कहा कि जब वे कहानियां लिखते हैं तो पढ़ने वाले उनसे जुड़ जाते हैं, उनके नजरिए भावनाओं, एहसासों और नजरिए को समझ पाते हैं। उधर चर्चा और संवाद, अनुभवों का आदान प्रदान और एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ना, भाई बहन बनना और भाईचारे के बंधन को बनाने एवं मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध होना, यूरोप में बौद्ध, क्रिश्चिय, हिंदू, जैन और सिख संवाद और सहयोग के माध्यम से भाईचारे का निर्माण,
शीर्षक सम्मेलन का यही अर्थ है जो 23 और 24 जून तक रोम में संत थॉमस अक्वाइनस के पोंटिफिकल विश्वविद्यालय में हो रहा है। पहल के आयोजकों में से एक अंतरधार्मिक संवाद परिषद के प्रीफेक्ट कार्डिनल जॉर्ज जेकब कुआकार्ड ने अपने अभिवादन में इस बात पर जोर दिया कि भाईचारे की अवधारणा को अक्सर एक काल्पनिक विचार माना जाता है, खासकर ऐसे समय में जब यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मानवता के खिलाफ अपराधों, युद्धों, हिंसा, संघर्ष, विभाजन, भेदभाव और नफरत से गंभीर रूप से कमजोर हो गया है। कार्डिनल कुआकार्ड ने 1986 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय द्वारा बुलाए गए शांति के लिए विश्व प्रार्थना दिवस की 40वीं वर्षगांठ और सार्वभौमिक भाईचारे से प्रेरित संत फ्रांसिस की मृत्यु की 800वीं वर्षगांठ से पहले असीसी की भावना को याद किया, जिन्होंने संत पापा फ्रांसिस के मानव भाईचारे पर विश्व पत्र फ्रातेली तुती को प्रेरित किया था। कार्डिनल कुआकार्ड ने संवाद और सहयोग के माध्यम से विश्वासियों और अच्छे इरादों वाले लोगों के बीच पुल बनाने की आवश्यकता पर संत पापा लियो 14वें के शब्दों पर भी विचार किया। कार्डिनल कुआकार्ड ने कहा कि संत पापा के लिए भाईचारा एक जीवित वास्तविकता है जो संघर्षों, मतभेदों और तनावों से अधिक मजबूत है, जो संस्कृतियों, संवेदनाओं और परंपराओं को पारस्परिक संवर्धन के अवसर में बदल देती है। उधर पूरे यूरोप में एक बहुत ज्यादा गर्मी की लहर चल रही है जो अफ्रीका की ओर से दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही है। जून में इतना ज्यादा और इतना लगातार तापमान पहले कभी देखा नहीं गया था और विशेषज्ञों का अंदाजा है कि गर्मी इस महीने के अंत तक कम नहीं होगी। कुछ का अंदाजा है कि यह 5 जुलाई तक चलेगी। फ्रांस में ठंडा करने की कोशिश में 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि इटली में आज 15 शहर रेड लिस्ट में हैं और कुछ लोग इसके लिए जलवायु परिवर्तन को दोष दे रहे हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: सुला लिटुर्जिया।
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। हम वैटिकन द्वितीय महाधर्म सभा के धर्म सिद्धांत, विशेषकर साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम धर्म विधि पर अपनी धर्म शिक्षा माला को जारी रखते हैं। उन्होंने कहा कि जब संत अगुस्टीन ख्रिस्त के रहस्यमय शरीर के बारे में नए दीक्षार्थियों को बताने की चाह रखते हैं, तो वे संत पौलुस के इन पदों का उपयोग करते हैं जिसे हमने अभी अभी सुना है। इस तरह आप सब मिलकर मसीह के शरीर हैं और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग। वे इस बात को जोड़ते हैं, यह स्वयं आपका रहस्य है जिसे आप प्राप्त करते हैं। आप जो हैं उसका प्रत्युत्तर यह कहते हुए देते हैं आमीन, और आपका यह उत्तर आपकी पहचान बनती है।
0: Vi si dice il corpo di Cristo e voi rispondete amen.
1: आपसे कहा जाता है ख्रिस्त का शरीर, और जवाब में आप कहते हैं आमीन। अतः आप ख्रिस्त के शरीर का अंग बने जिससे आपके आमीन की सत्यता साबित हो। आप जो देखते हैं और आप जो हैं उसे स्वीकार करें। संत पापालियो ने यीशु की अंतिम व्यारी के भोज की याद दिलाते हुए कहा, धर्म विधि के धर्म सिद्धांत हमें संत अगुस्टिन के शब्दों में यूखारिस्त के बारे में कहते हैं। ख्रिस्तियों के लिए ख्रिस्त के भोज में शामिल होने का अर्थ ईश्वर के वचनों से शिक्षा ग्रहण करना है, उसके द्वारा पोषित होना और ईश्वर को धन्यवाद देना। हम उन्हें उनके शब्दों में और यूखारिस्त में ग्रहण करने के द्वारा वही बनते हैं जिसे हम ग्रहण करते हैं। हम वह शरीर बनते हैं जिसका शीर्ष पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त हैं, जो पिता के दाहिने विराजमान हैं, जो हमारे लिए स्वर्ग में एक स्थान तैयार करते हैं। इस भांति यूखारिस्त ईश्वर के राज्य का वह संस्कार है जो आने वाला है। यह वह रोटी है जो स्वर्ग हमारे निवास की ओर यात्रा करने हेतु हमें अग्रसर करती है, उस पुण्य समय तक जब ईश्वर सब कुछ पर शासन करेंगे। संत पापा ने कहा कि विश्वासियों का समुदाय धर्म विधि के दौरान न सिर्फ पुरोहित के हाथों से बल्कि उनके संग बलि अर्पित करते हैं। इस दृष्टिकोण से यूखारिस्त ख्रिस्तियों के लिए आध्यात्मिक बलि का स्वरूप है, ईश्वर और एक दूसरे के संग एकता का मार्ग। इसमें सहभागी होते हुए वे इस बात को सीखते हैं, अपने को समर्पित करने ख्रिस्त की मध्यस्थता द्वारा वे अपने को प्रतिदिन ईश्वर और एक दूसरे के संग एक गहरे संबंध में प्रवेश करता हुआ पाते हैं। इस भांति ख्रिस्त के संग अपने को एक शरीर बनाते हुए यूखारिस्त हमें यीशु ख्रिस्त की जीवन शैली को अपनाने की शिक्षा देती है, जहां हम उन्हें अपने को स्वतंत्र उपहार स्वरूप देते हैं। यह उपहार हमें एकता के आयाम से संयुक्त करता है जो हमें दुनिया, हमारे समुदायों, हमारे परिवारों और हमारे हृदयों को बांटने वाली ताकतों के मध्य हमें एक शक्तिशाली मारक बनाती है। संत पापा लियो ने कहा,
0: Carissimi, quando partecipiamo all'Eucaristia, siamo invitati ad ascoltare la parola di Dio e a nutrirci alla mensa del Signore.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, जब हम यूखारिस्त में सहभागी होते हैं तो हम ईश्वर के वचनों को सुनने और अपने को उनकी मेज से पोषित करने हेतु बुलाए जाते हैं, जहां वे अपने को पिता के लिए अर्पित करते हैं। मिस्सा के ये दो भाग, शब्द समारोह और यूखारिस्त की धर्म विधि, ये दोनों अपने में इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि वे अपने में पूजन विधि एक ही कार्य लगते हैं। संत पापा ने कहा कि ईश वचन के संबंध में हमारे लिए इस बात को याद करने की आवश्यकता है कि यह अपने में सिर्फ बौद्धिक रूप में धर्म ग्रंथ का ज्ञान हासिल करना नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के सजीव और सक्रिय वचनों को ग्रहण करना है जिसे ईश्वर हम में से हर एक को और हर समय व्यक्तिगत रूप में कहते हैं। ईश्वर का वचन हमें यूखारिस्त की रोटी के संग पोषित और मजबूत बनाए रखता और हमें पापों की सड़न से दूर करते हुए ख्रिस्त में नया जीवन

0: प्रदान करता है। यूखारिस्ट हमें धर्म ग्रंथ की समझ हेतु खोलता है, वैसे ही जैसे कि धर्म ग्रंथ अपने में यूखारिस्ट के रहस्य की चर्चा हमारे लिए करता और उसे हमारे लिए प्रज्वलित करता है। वैटिकन द्वितीय महासभा हमें इस बात के लिए निमंत्रण देती है कि हम बाइबल की निधियों को और अधिक रूप में खुला रखें, जिससे विश्वासियों को ईश्वर के वचन रूपी मेज से बेहतर भोजन मिल सके। धर्मविधि में लाई गई नवीनता ने इस समृद्धि को धर्मविधि के पाठ संग्रह में संयुक्त किया है। वह पुस्तिका जिसमें धर्म ग्रंथ के पाठों को धार्मिक अनुष्ठान के लिए संग्रहित किया गया है। इस समृद्धि को हम शुद्ध जीवित परंपरा से लिया गया पाते हैं, जो परंपरा के प्रति निष्ठा को वैध प्रगति हेतु खुलेपन के साथ जोड़ता है। संत पापा लियो ने कहा,
1: L'inizio del capitolo secondo della Costituzione sulla liturgia è intessuto di riferimenti al grande fiume della tradizione.
0: धर्मविधि हेतु धर्म सिद्धांत के अध्याय दो में हम परंपराओं की एक वृहद समृद्धि को पाते हैं, जो कलिसिया के आचार्यों से हमारे लिए प्रवाहित होती है। उन्होंने उद्धृत करते हुए कहा, अंतिम व्यारी के समय उस रात को जब उन्हें धोखा दिया गया था, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने शरीर और रक्त का बलिदान अर्पित करते हुए यूखारिस्त की स्थापना की। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया ताकि क्रूस के बलिदान को सदियों तक बनाए रखा जा सके, जब तक कि वे दोबारा न आए, और इस तरह अपनी प्यारी वधु कलिसिया को अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की यादगारी सौंपी। प्रेम का एक संस्कार, एकता की निशानी, करुणा का संबंध, पास्का का एक भोज जिसमें हम ख्रीस्त को ग्रहण करते हैं, जहां हमारा मन कृपा से भर जाता है और हमें भविष्य में महिमा की प्रतिज्ञा की जाती है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा, आइए हम विश्वास में दिव्य जीवन और उस रहस्य से अपने को परिवर्तित होने दें जिसकी यादगारी हम मनाते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

0: आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने बुधवार 24 जून को फादर आनंद डेविड खलखो को रांची महाधर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है। वे अभी रांची महाधर्म प्रांत के विकर जनरल और रांची में संत मरिया महागिरजा घर के पल्ली पुरोहित के रूप में कार्यरत हैं। नवनियुक्त सहायक धर्माध्यक्ष आनंद डेविड खलखो का जन्म 20 नवंबर 1975 को रांची महाधर्म प्रांत के मांडर में हुआ। उन्होंने कोलकाता के संत जॉन वियानी माइनर सेमिनरी, संत अल्बर्ट कॉलेज मेजर सेमिनरी और रांची में संत जेबियस कॉलेज में पढ़ने के बाद रांची के संत अल्बर्ट कॉलेज में ईश शास्त्र की पढ़ाई की। 15 मई 2006 को रांची महाधर्म प्रांत के लिए उनका पुरोहिताभिषेक किया गया। पुरोहित के रूप में वे 2006 से 2009 तक कार्डिनल टोप्पो के पर्सनल सेक्रेटरी रहे। 2009 से 2011 तक मैंगलोर के मुल्लर हॉस्पिटल में हॉस्पिटल प्रशासन के प्रबंधन में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। फिर 2011 से 2015 तक CBCI सोसाइटी फॉर मेडिकल एजुकेशन उत्तर भारत के सह निदेशक और तत्कालीन बिझान रीजन के धर्माध्यक्ष पुरोहितों के परिषद के अध्यक्ष थे। 2011 से 2020 तक लीवंस हॉस्पिटल प्रोजेक्ट मांडर के निदेशकों की समिति के सदस्य, 2015 से 2017 तक CBCI दिल्ली के महासचिव के सचिव, 2017 से 2020 जनसंपर्क अधिकारी, 2019 से 2020 तक रांची में महाधर्माध्यक्ष निवास के प्रबंधक और 2020 से रांची में संत मरिया महागिरजा घर के पल्ली पुरोहित, 2021 से रांची में सामाजिक विकास केंद्र के निदेशक और 2022 से रांची में सेमिनारियों के निदेशक तथा 2024 से रांची के विकर जनरल के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। और हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी कल्पना, आपकी कहानी कहने की सृजनशीलता और आपकी जिंदा दिली सोच की जरूरत है। हमें आजादी और सच्चाई की जगहें बनाने के लिए इनकी जरूरत है, जहां ईश्वर की कृपा सुकून और शांति का वादा दे सके। यह हौसला संत पापा लियो 14वें ने बुधवार को दुनिया के कई हिस्सों से आए लेखकों को दिया, जो 1926 में बने वाटिकन प्रकाशन भवन लिब्रेरिया एडिट्रिच वाटिकाना की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर रोम में एकत्रित हुए हैं। संत पापा ने कहा, सबसे पहले लिखना सच और खुलासे का काम है, क्योंकि यह बताता है कि हम कौन हैं, हम क्या मानते हैं और क्या उम्मीद करते हैं, हम किस दुनिया के लिए कोशिश करते हैं और हम किस भविष्य का सपना देखते हैं। संत पापा ने कहा, सच की इस खोज में हम महसूस करते हैं कि सच बहुत छोटा है, जो ईश्वर के साथ हमारी अंदरूनी बातचीत में और हमारे पड़ोसियों के साथ हमारी खुली और शिष्ट बातचीत में खुद को हमारे सामने लाता है। संत पापा ने उन्हें चेतावनी दी कि हम कभी भी सच के मालिक नहीं होते, अगर कुछ है तो वह सच ही है जो हमें जीतता है। संत पापा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लेखक दूसरों को सच की ओर खींचने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वे खुद भी इसकी ओर खींचे चले आते हैं। संत पापा ने कहा कि लिखना इंसानियत का काम है, यह देखते हुए कि साहित्य इंसानी अनुभव के परे पहुंच को शामिल करता है, एक ऐसा नजरिया हासिल करता है जो हमारी इंसानियत को बढ़ाता है। हम एक कल्पनाशील हमदर्दी विकसित करते हैं, जो हमें यह पहचानने में मदद करती है कि दूसरे असलियत को कैसे देखते हैं, अनुभव करते हैं और उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। संत पापा ने कहा कि जब वे कहानियां लिखते हैं तो पढ़ने वाले उनसे जुड़ जाते हैं, उनके नजरिए, भावनाओं, एहसासों और नजरिए को समझ पाते हैं। उधर चर्चा और संवाद, अनुभवों का आदान प्रदान और एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ना, भाई बहन बनना और भाईचारे के बंधन को बनाने एवं मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध होना, यूरोप में बौद्ध, क्रिश्चिय, हिंदू, जैन और सिख संवाद और सहयोग के माध्यम से भाईचारे का निर्माण, शीर्षक सम्मेलन का यही अर्थ है, जो 23 और 24 जून तक रोम में संत थॉमस अक्वाइनस के पोंटिफिकल विश्वविद्यालय में हो रहा है। पहल के आयोजकों में से एक अंतरधार्मिक संवाद परिषद के प्रीफेक्ट कार्डिनल जॉर्ज जेकब कुआ कार्ड ने अपने अभिवादन में इस बात पर जोर दिया कि भाईचारे की अवधारणा को अक्सर एक काल्पनिक विचार माना जाता है, खासकर ऐसे समय में जब यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मानवता के खिलाफ अपराधों, युद्धों, हिंसा, संघर्ष, विभाजन, भेदभाव और नफरत से गंभीर रूप से कमजोर हो गया है। कार्डिनल कुआ कार्ड ने 1986 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय द्वारा बुलाए गए शांति के लिए विश्व प्रार्थना दिवस की 40वीं वर्षगांठ और सार्वभौमिक भाईचारे से प्रेरित संत फ्रांसिस की मृत्यु की 800वीं वर्षगांठ से पहले असीसी की भावना को याद किया, जिन्होंने संत पापा फ्रांसिस के मानव भाईचारे पर विश्व पत्र फ्रातेली तुती को प्रेरित किया था। कार्डिनल कुआ कार्ड ने संवाद और सहयोग के माध्यम से विश्वासियों और अच्छे इरादों वाले लोगों के बीच पुल बनाने की आवश्यकता पर संत पापा लियो 14वें के शब्दों पर भी विचार किया। कार्डिनल कुआ कार्ड ने कहा कि संत पापा के लिए भाईचारा एक जीवित वास्तविकता है जो संघर्षों, मतभेदों और तनावों से अधिक मजबूत है, जो संस्कृतियों, संवेदनाओं और परंपराओं को पारस्परिक संवर्धन के अवसर में बदल देती है। उधर पूरे यूरोप में एक बहुत ज्यादा गर्मी की लहर चल रही है, जो अफ्रीका की ओर से दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही है। जून में इतना ज्यादा और इतना लगातार तापमान पहले कभी देखा नहीं गया था और विशेषज्ञों का अंदाजा है कि गर्मी इस महीने के अंत तक कम नहीं होगी। कुछ का अंदाजा है कि यह 5 जुलाई तक चलेगी। फ्रांस में ठंडा करने की कोशिश में 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि इटली में आज 15 शहर रेड लिस्ट में हैं और कुछ लोग इसके लिए जलवायु परिवर्तन को दोष दे रहे हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।
1: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodesanpietro.va पर जरूर जाएं।